0: हेलो हेलो
1: हेलो हेलो
2: जी के कैसे कर दूं जी के
0: मीन दे क्या मैं
2: तो दी कौन सा के का फिटे रे फर्स्ट तरफ ने मोय आलन यो डैड में काई ना कर टैग की गेट और दोनों काई ना क्यों तन लास्ट की की तो किन बात ने बाद विलार के के ओ हो दंत तो हेलो तो के तो यो स्टा ना गने रे गुदार ना तो दे की लागो सा क्विनेस के दिख ना कि दी के का से को तो ले स्टा
0: मीन दे क्या मैं